पिचोने रेडी की थी मूड द कचिल करन हैप्पी बिलक जानी एक दे दुनु मावत।

मर जाओ या जीलू जरा मेरे इन तो टीका जीवत गेलाहे आदर टपिक आटवत उत्तर हो भाई आदर की अन्े मरने उत्तरे निमे जीवत्न उत्तर हरि मंगद मेहम की आने कल्पना कला मंग आसम ओय अस बलन एत मट बलन बैरिम ओय अस इतरीटी को संपूर्ण कर ला देन बिंदु आई हाथ सी एक अनुपहाय अनुपहाय अनुपहाय नैन्ना मंग आसम ओय अस बलन एत मट बलन बैरिमा

सुब मंदारम रैक मामा आसम ओयास दिह बालन एत मट बालन नम बेरी ओयास दिह में मुकद क्यूट ओयास देख दिया बलवा मामा टपे नौ विच रखने में मामा ही मिकर गत मगे म कुट सक इदा ओयास वलिंदा कादर या आदे ओयास वलम संग वगिन तीन दुरास पावे मगे इत्र किया गया न मेरी तरह बड़ कथा वक वेला ये निसा दुरिंग इंदंग वे अस्ती है बलन मगे इत तामा से एत लागे टविते अस्वले ट ऐसे कित करन मटे ताम बाय मके देखी वत वे ऐस मटे ताम ता आदरे मता करनो एते आदरे मटे ही मिनती बाव आयत मटे मता कर ले देने तो ऐस माय रंगन बस नायक बदलें पंगासमोय कॉपी पाते ऐस देखते मगे नौनत मगे ही ना हम एक कक मनावतुने ए ऐस लगे ए तुदमाय बालान बेरी कम देत ए ऐस में बच्चे एक मक्के दिखिवत एक बैल मार्क ऐति अमतक करण हाथ बस सील में मातक आये थे उसमें गान मिलीमीटर गानांग वालीं खड़ीच मगे हादेवत කැලේ එකතු කළා තාමත් ඉරි తిරි වෙලා තියන්නේ හිස්තනක් විතරයි ඒ හිස්තන ඇතුලේ ඔයාගේ නමක්වත් නැහැත් ඔයා නැති බව හැම තත්පරයකම මං කල්පනා කරනවා ඔයාගේ හිස්තනේ තත්පරවල තියනවා ඒ නිසාම මං තාමත් ආසය කෝපි පාට ඇස් දෙකට ඒතේ ඇස් දිහා බලන්න මට තාමත් බෑ මොකද मगर तुम आगे हाथ वेत कह दूने, वो यहाँ किया था उसे नहीं, वो ऐस ध्यान तीम बतावे टे बाल पुदा उसे, प्रार्थना दे उमेने, मगे हाथ वेत कह दूने, वो यहाँ किया था उसे नहीं, वो ऐस ध्यान अंतिम बतावे टे बाल पुदा उसे

क्या हुआ तेरा वादा, मुकद्दा की पुरंदर तूने या ये पुरंदर भी तूने। भूलेगा दिल जिस दिन तुम है, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। दावस के मांगे ही तो आवा मत के खराई है पे, ये का मांगे जीवित अंतिम दावस वे। आदरणीय तरंग पतुआ तनिव निकमेन तुम बट पेरा मामा नती दाट तुम बट नपुरक वे विद एम है तन कट तुन हितम देवी आलो एक वेन पेर पिनक तियनो ना धन्यवाद तरंग या क्यूए एम आई ये मन देख पोहादरणीय मैस दिख मटत नोकिया मैस भी आ गया था माल मांडुलेन खांडल सितरा आई मिवी मत प्रेम।

0: आदरणीय तरंगा सुबह मंदारम रैक वेवा मिच्छर काला काटत नदुन्ने अस्तिक मैंने पिरिमे अस्तिहा नबेलो मैं मगे अस्तिक वयाद वित्रमाई मगे दिहा बलाल खता करने का मम बलांगीन ना ये दावस का वधा दिखी आने मंदाने
1: नमकी आना ते पालो इतनी कॉमन दे हमें के दाने गाने की आने को